0: क्या उनकी अकलें उनको यही सिखाती हैं, बल्कि ये लोग हैं ही शरीर।
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: क्या कुफार कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान अज खुद बना लिया है, बात यह है कि ये खुदा पर ईमान नहीं रखते।
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ
0: अगर ये सच्चे हैं तो ऐसा कलाम बना तो लाएं।
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
0: क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने तई पैदा करने वाले हैं।
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
0: या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, नहीं बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते।
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
0: क्या उनके पास तुम्हारे परवरदिगार के खजाने हैं, या ये कहीं के दारोगा हैं।
1: أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
0: या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुनाते हैं, तो जो सुनाता है वो सरीह सनद दिखाए।
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: क्या खुदा की तो बेटियां और तुम्हारे बेटे।
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम, क्या तुम उनसे सिलह मांगते हो कि उन पर तावान का बोझ पड़ रहा है।
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: या उनके पास गैब का इल्म है कि वो उसे लिख लेते हैं।
1: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ
0: क्या ये कोई दाव करना चाहते हैं, तो काफिर तो खुद दाव में आने वाले हैं।
1: أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: क्या खुदा के सिवा उनका कोई और माबूद है, खुदा उनके शरीक बनाने से पाक है।
1: वह

0: खुदा।
1: वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़ लिए हैं। खुदा ने तो उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। ये लोग महज जन्न फासिद और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे हैं, हालांकि उनके परवरदिगार की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है।
0: अम लिल इंसान मा तमन्ना,
1: क्या जिस चीज की इंसान आरजू करता है वो उसे जरूर मिलती है।
0: फलिल्लाहिल आखिरतु वल औला,
1: आखिरत और दुनिया तो खुदा ही के हाथ में है।
0: वकम

0: उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और ना किसी जिन से।
1: फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ,
0: गुनहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांवों से पकड़ लिए जाएंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون,
0: यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे।
1: يطوفون بينها وبين حميم آن,
0: वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे।
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: वलिमन खौफ मकाम रब्बिहि जन्नतान,
0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं।
1: फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: अफनान,
0: उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।
1: फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: फीहिमा अयनान तजरियान,
0: उनमें दो चश्मे बह रहे हैं।
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: فيهما من كل فاكهة زوجان,
0: उनमें सब मेवे दो दो किस्म के।
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: मैदान।
1: अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं।
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے।

0: जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र और सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब और ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश के उससे खेती उगती और किसानों को खेती भली लगती है, फिर वो खूब जोर पर आती है, फिर ऐ देखने वाले तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए खुदा की तरफ से बख्शिश और खुशनुदी है और दुनिया की जिंदगी तो मताए फरेब है।
1: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض

ताकि जो मतलब तुमसे फौत हो गया हो उसका गम न खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो और खुदा किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद।
2: अपने सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। पहली हिजरत हबशा, जोरो सितम का मजकूरा सिलसिला नबूवत के चौथे साल के दरमियान या आखिर में शुरू हुआ था और इब्तदान मामूली था, मगर दिन ब दिन और माह ब माह बढ़ता गया, यहाँ तक कि नबूवत के पांचवीं साल का वस्त आते आते अपने शबाब को पहुँच गया, हत्ता कि मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दो भर हो गया और इन्हें इन पहम सितम रानियों से निजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। इन्हीं संगीन और तारीख हालात में सूरह कहफ नाजिल हुई। ये असलन तो मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाब में थी, लेकिन इसमें जो तीन वाकयात बयान किए गए हैं, इन वाकयात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए मुस्तकबिल के बारे में नहायत बलीग इशारात थे। चुनाचे असहाबे कहफ के वाक्य में ये दर्स मौजूद है कि जब दीन व ईमान खतरे में हो तो कुफ्र व जुल्म के मराकज से हिजरत के लिए तन ब तकदीर निकल पड़ जाना चाहिए। इरशाद है, और जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए तो गार में पनाहगीर हो जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी सहूलत की चीज़ तुम्हें मुहैया करेगा। मूसा और खजर अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये बात साबित होती है कि नताइज हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औकात ज़ाहिरी हालात के बिल्कुल बरअक्स होते हैं। लिहाजा इस वाक़े में इस बात की तरफ लतीफ़ इशारा पना है कि मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त जो जुल्म व तशद्दुद बरपा है, इसके नताइज बिल्कुल बरअक्स निकलेंगे और ये सरकश मुशरिकीन अगर ईमान ना लाए तो आइंदा इन्हीं मकहूर व मजबूर मुसलमानों के सामने सर निगूं होकर अपनी किस्मत के फैसले के लिए पेश होंगे। ज़ुल्करनैन के वाक़े में चंद खास बातों की तरफ इशारा है। नंबर एक, ये कि ज़मीन अल्लाह की है और वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बनाता है। नंबर दो, ये कि फलाह व कामरानी ईमान ही की राह में है, कुफर की राह में नहीं। नंबर तीन, ये कि अल्लाह ताला रह रह कर अपने बंदों में से ऐसे अफराद खड़े करता रहता है जो मजहूर व मकहूर इंसानों को इस दौर के याजूज व माजूज से निजात दिलाते हैं। नंबर चार, ये कि अल्लाह के सालेह बंदे ही ज़मीन की वरासत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। फिर सूरह कहफ के बाद सूरह ज़ुमर का नज़ूल हुआ और इसमें हिजरत की तरफ इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है। इरशाद है, जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की इनके लिए अच्छाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है, सब्र करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब दिया जाएगा। इधर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मालूम था कि असहमा नजाशी शाह हबश एक आदिल बादशाह है, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो फितनों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हबशा हिजरत कर जाएं। इसके बाद एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 5 रजब 90 में सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहले गरों ने हबशा की जानिब हिजरत की। इस गरों में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके अमीर थे और इनके हमराह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की साहिबज़ादी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकल कर अपनी नई मंजिल की जानिब रवाना हुए। राजदारी का मकसद ये था कि कुरैश को इल्म ना हो सके। रुख बहरा अहमर की बंदरगाह शोया की जानिब था। खुशकिस्मती से वहाँ 2 तजारती कश्तियाँ मौजूद थी जो इन्हें अपने दामन आफियत में लेकर समुंदर पार हबशा चली गई। कुरैश को किसी कदर बाद में इनकी रवानगी का इल्म हो सका, ताहम इन्होंने पीछा किया और साहिल तक पहुँचे, लेकिन सहाबा कराम आगे जा चुके थे इसलिए नामुराद वापस आए। इधर मुसलमानों ने हबशा पहुँच कर बड़े चैन का सांस लिया। اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنانا تھا، کیونکہ ان کا دائمی وطیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا، ارشاد ہے، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو اور ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رنائی اور دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوش بھر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کے اواخر میں دل ہلا دینے والی آیات کی تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا، تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رنائی اور جلال نے متکبرین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کی، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ افترا درازی کی اور یہ جھوٹ گڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بلند پایا دیو ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افترا پردازی کرتے رہتے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گڑتے۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی نشست، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی نشست میں۔ سامعین، اپنے اس سلسلے کو مزید آگے ہم اگلی نشست میں بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: You are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Duniya.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: आलमी इदारा सेहत के हालिया अदाद व शुमार के मुताबिक 2.2 बिलियन अफराद आँखों के मसाइल से दो चार हैं। सूजी हुई लाल आँखें, मुसलसल सर दर्द, आँखों में दर्द, तेज रोशनी का चुपना, चीजों का डबल और धुंधला दिखाई देना बिनाई की कमजोरी की अलामत हो सकती हैं। ऐसी अलामत की सूरत में बिल्कुल लापरवाही न बरतें और फौरन करीबी अस्पताल से अपना मुआयना करवाएं। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Lunch 2.6.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, FM 92.6 यूसीपी की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली अजबत, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इरफान अली फानी साहब। ब्रेक से पहले हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पूछना था सर इरफान अली फानी साहब से। हम इनसे अब पूछेंगे कि सर आप बात कर रहे थे तनकीद के बारे में, आपने बात की तजहीक लफ्ज आपसे इस्तेमाल किया और तीन चार और लफ्ज थे जो आपने सिमिलर इस्तेमाल किए, तो मुझे आप ये बताएं कि इन अल्फाजों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली हम इसको किस तरीके से हम जाने।
2: अजबत, आप जितने भी लफ्ज अभी हम इस्तेमाल कर रहे थे तनकीद, तजहीक और मजाह या मजाक, अब ये वो अल्फाज हैं कि इनकी अगर हम नियत को जान लें कि करने वाले की नियत क्या है तो हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे। अगर तो वो इख्तलाफ हैं, ये सारे इख्तलाफात, तनकीद की बुनियाद भी इख्तलाफ होता है, तजहीक की बुनियाद भी इख्तलाफ होता है, और जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो उसकी बुनियाद भी इख्तलाफ ही होता है। अब उस इख्तलाफ के पीछे आपकी नीयत अगर तो दूसरे की इसलाह करना है तो वो तनकीद आएगी कि मैं ये चाहता हूँ कि अजवद में ये खामियां हैं, अगर ये टाइमली क्लास में आना शुरू हो जाए, टाइमली जो असाइनमेंट्स हैं उन पे काम करना शुरू कर दे तो ये बहुत जल्दी ग्रूम कर सकता है और ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि क्लास के अंदर ये जो बच्चा है इसको मैं इस तरीके से इसे मैं बात करूँ कि ये डीग्रेड हो, ठीक है, ये बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सवाल करना मुनासिब नहीं लगता तो वो सवाल बड़े करता है, लिहाजा मैं अब जो है ना इस पे तनकीद करना जो है ना वो मैं शुरू करूं। अब मैं अगर आपकी ज़ाहरी शबाहत को, आपकी उन बातों को इख्तलाफ की नज़र करूं, अगर मेरे इख्तलाफ का निशाना आपके नज़रियात नहीं है, आपकी ज़ात है, आपकी ज़ात में मौजूद आपके जिस्मानी खदुखाल हो सकते हैं, हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तुम्हारे होंठ ऐसे हैं, मतलब उसको डीग्रेड करने के लिए, तो ये लफ्ज़ तज़हीक होता है, ये तनकीद में नहीं आएगा। और असल में मैंने जब इन तमाम चीज़ों को मैं जब मुशाहदा करता हूँ या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मेरे अपने तजुर्बात होते हैं कि हम बाज़ुकात मज़ाक के नाम पर ना जाने कितने लोगों का दिल तोड़ रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि दूसरे के दिल में ये जो बात जिन पे हम हंस रहे हैं दूसरे के दिल के अंदर ये कैसे तीर की तरह लग रहे हैं। मियां मोहम्मद बख्श ने कहा था, मस्जिद टा दे मंदिर टा दे जो कुछ टेंदा पर किसे दा दिल ना टावी रब है दिल विच रहंदा। तो यो जो दिल होता है ना वो अब सुनने वाले को जब लफ्ज लग रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर मेरी ज़ात को नीचा दिखाया जा रहा है, मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रहा है और मेरी जो एक शख्सियत है उसको इस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासेस के अंदर ना कुछ बच्चों की उम्रें ज़्यादा होती हैं, लाइक जो देहाती बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक होता है और लेट उम्र में वो स्कूलिंग उनकी स्टार्ट होती है तो वो होते तो बीएस में हैं लेकिन उनकी उम्रें आम बच्चों से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब पूरी जो क्लास के अंदर ऐसा एक तबका होता है हर क्लास के अंदर जिसको मैं आमतौर पे इवल एलिमेंट्स कहता होता हूँ कि वो उस बच्चे की उम्र को बार बार डिस्कस करके उसको टॉन्ट करेंगे, कभी उसको अंकल कह के पुकारना शुरू कर देंगे, कभी उसके लिए बाबा जी आ जाएं आप बड़े हैं आप इधर आके बैठ जाएं। अब जाहरन अब ये लफ्ज़ अदब वाला है कि बाबा जी आए बैठ जाएं आप उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब आप बार बार इसको रिपीट कर रहे होते हैं तो आपकी नीयत पीछे ये है करते हुए कि हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये उम्र में बहुत बड़ा है और हम उम्र में इतने छोटे होके भी इसके बराबर बैठे हुए हैं, मतलब आप कंपेयर कर रहे हो कि मैं 12-15 साल का होके बीएस कर रहा हूं और ये जो है 22-25 साल का होके बीएस कर रहा है।
1: अच्छा सर, इसमें मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा। देखिए हम लोग खुद ही दूसरों को मौका देते हैं ना कि हमारा मजाक उड़ाया जाए, तो हम कुछ ऐसा क्यों, ऐसा क्या इकदाम किए जाए, हम अपनी तरफ से क्या बेस्ट दे सकते हैं कि लोगों को स्टॉप किया जा सके इस चीज से, क्योंकि ये भी एक वायलेंस ही फैलाना है ना कि आप किसी को बेजा क्रिटिसाइज करते हो।
2: सबसे पहले एक चीज होती है, अगर तो हम कोई भी बात करते हुए इंसानियत को मलहूज खातिर रखेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स भी दूसरे के साथ ऐसी बात करेगा कि दूसरे का दिल दुखे। अब इसके अंदर हमारा सोशल सेटअप कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, अब वो कौन सी बातें हैं जो हमारे जहन में खबते अजमत पैदा कर रही हैं, عظمت کا بھی خبت ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں اچھے گریڈ کی وجہ سے خبت عظمت میں آ جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, ماشاء اللہ پیسے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ چیز ان کو خبت عظمت میں مبتلا کر دیتی ہے. کچھ لوگوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ یا جج ہیں, پرائم منسٹر ہیں, یا بڑے عہدے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا ہوا ہے, تو وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ ان کی تربیت کے اندر وہ پچھلا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب زندگی کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں, یہ وقت کہتے ہیں بڑا ظالم ہے. آج جن خصائص کی بنیاد پہ ہم دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, بہت ممکن ہے کہ کل کو ہم خود انہی خصائص کی بیس پہ لوگ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہوں. تو دنیا میں کہتے ہیں سب سے آسان کام جس کے لیے ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ تنقید ہے. وہ ایک بڑا مزے کا ایک واقعہ ہمیں سنایا کرتے تھے ہمارے ٹیچر کہ ایک شخص پینٹر تھا, اس نے ایک تصویر بنائی اور ایک چوراہے پہ لگا دی اور نیچے یہ لکھ دیا کہ اس تصویر کے اندر جو جو فلاز آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو خامیاں نظر آ رہی ہیں, ان کو آپ سرکل کر دیں یا ان کی نشاندہی کر دیں. اب جب دوسرے دن وہ لگا کے چلا گیا اور واپس آیا تو دیکھا پوری کی پوری جو پینٹنگ تھی وہ سرکل سے بھری ہوئی تھی, جگہ جگہ لائنیں لگی ہوئی تھی کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. کیونکہ سب سے آسان جو کام ہے زندگی میں وہ ایک ہی ہے, وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا دینا. اب اس نے نیچے لکھا کہ اچھا آپ نے بہت اچھا کیا کہ نشاندہی کر دی ان غلطیوں اور ان خامیوں کی, اب آپ ان کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کی تصحیح بھی فرما دیں, مطلب ان کی درستگی کر دیں, ان کو صحیح کر دیں. تو وہ 3 دن تک مسلسل پینٹ وہاں پہ لگی رہی لیکن کسی میں اتنا نہ حوصلہ ہوا کہ اس میں تصحیح کر سکے یا اس کو درست کر سکے. تو زندگی میں ہمارا سارے کا سارا جو رویہ ہوتا ہے وہ اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھا رہے ہوتے ہیں, 3 جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ ہماری طرف ہوتی ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ اگر وہی بات کوئی مجھ سے کہے گا تو میرے پہ کیا بیتے گی یا میرے دل پہ اس کے اثرات کس طرح کے ہوں گے.
1: جی یہاں پہ ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. آپ سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا, اور بریک کے بعد ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے, خبت عظمت, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ بیسکلی لفظ کیا ہے. کیپ لسننگ FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB.
1: कुछ जाल साज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: टर्न ऑन द रेडियो एंड ट्यून इन FM 92.6 UCD Dunia।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

0: Let's get stress-free. Tune into FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

के सुरोरतान सुरोरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB.
1: कुछ जाल साज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमो की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया,
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.
5: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेन फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में

वक्त ने पांव में डाली हैं कई जंजीरें, ख्वाब ही ख्वाब फकत और नहीं ताबीरें, यह चेहरे के हैं पानी पे बनी तस्वीरें, जलती बुझती हुई देखी हैं सदा तकदीरें, फिर भी काफी है अगर पाले हम थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा गम।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।